आरडी बर्मन पंचम एक इंसान थे हटके और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे दूसरों से हटके, और उनका ज्यादातर काम हटके ही हुआ करता था। आरडी बर्मन का हर काम मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो बर्मन साहब कभी कभी बोलते थे, बोले तू तो पंचम का अंध भक्त हो गया। बोले हाँ, पंचम का काम मुझे बहुत पसंद है। वो क्लासिकल से लेकर वो कॉमेडी सॉन्ग्स भी इतने ज़बरदस्त बनाते थे।

0: जी मैं एक सिटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सिटी है। जैसे पिक्चर हॉल में सिटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सिटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सिटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सिटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सिटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर, the coolest one.

और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न

आरडी बर्मन पंचम एक इंसान थे हटके और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे दूसरों से हटके, और उनका ज्यादातर काम हटके ही हुआ करता था। आरडी बर्मन का हर काम मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो बर्मन साहब कभी कभी बोलते थे, बोले तू तो पंचम का अंध भक्त हो गया। बोले हाँ, पंचम का काम मुझे बहुत पसंद है। वो क्लासिकल से लेकर वो कॉमेडी सॉन्ग्स भी इतने ज़बरदस्त बनाते थे।

डस्टबिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।